0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Studio time.
4: It's 7 AM. Bihan ko 7 baje.
5: Time check ko 7 ma. New Star Digital Color Lab tatha Dwaramai Offset Press. Solu Dukunda Nagarpalika 5 Solu Khumbu.

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू।

0: पिपल्स कैंपस काठमांडू को भर्ना संबंधी सूचना।
1: 45 वर्ष को विश्वास बोकेको देशकै अग्रणी सामुदायिक कैंपस द पीपल्स कैंपस काठमांडू पकनाजोल में व्यवस्थापन तर्फ कक्षा 11 में भर्ना खुल्यो।
0: अनुभवी शिक्षक शिक्षिका स्मार्ट पढ़ाई र उज्जवल भविष्य अब सब एक ठाउँमा।
1: यहाँ टीयू अंतर्गत का एमबीएस बीबीए बीबीएम र बीबीएस कार्यक्रम संचालन में छन्।
0: थप जानकारी का लागि फोन नंबर 01-5351-990 5351-990 में संपर्क गर्नुहोला।
2: क्लासिक टेक को 16th एनिवर्सरी अफर जतिमा चाहियो त्यतिमा पायो। बजेट र प्याकेज तपाईकै रोजाइको। अब इन्टरनेट टीवी र वाईफाई 6 राउटर पनि त्यतिमै पाइन्छ। क्लासिक टेक को कुनै पनि प्लान खरिदमा हरेक हप्ता 3 जनालाई 3 महिना इन्टरनेट बोनस र मासिक 1 जनालाई रु 12,000 को इन्टरनेट बोनस। सम्पर्क 9801004477। क्लासिक टेक जतिमा चाहियो त्यतिमा पायो।
1: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौंमा पायल्स फिस्टुला फिसर लगायतका रोगहरूको दैनिक विशेषज्ञद्वारा परीक्षण परामर्श तथा शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध भइरहेको छ।
0: विशेषज्ञ सेवाहरू निशुल्क शल्यक्रिया सेवा अनुभवी आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सकद्वारा उपचार छाड सूत्र लगायत आधुनिक तथा आयुर्वेदिक उपचार पद्धति को सुविधा दैनिक ओपीडी तथा शल्यक्रिया सेवा।
1: रोग लुकाएर नराखौं समयमै परीक्षण गरौं।
0: थप जानकारी का लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौं फोन 01-4110-6690 41106690।
3: स्वस्थ जीवन का लागि आयुर्वेद अपनाऊ।

0: Raio Rádio Solo FM Kotaranga.
1: Solo FM 101.2 MHz. Ujjwal bhavishyako lagi hamro abhiyan.
2: Time check. Solo FM in studio time.
3: It's 9 a.m. बिहानको 9 बजे
1: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुन्डा नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साउन्ड चेक सुरु एफएम स्टुडियो टाइम
2: एएम बिहानको 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई अफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

न्यू स्टार कोलरिया तथा झोलामाई अपसेट प्रिंटिंग प्रेस सोलोदूत कुंडी नगर पालिक पास सलेरी स्कूल खुम्बू विगत देखने ग्राहक विश्वास जीती आयो न्यू स्टार कोलरिया तथा झोलामाई अपसेट प्रिंटिंग प्रेस थप सेवा का साथ में सब संग हमारा सेवा प्रेस संबंधी संपूर्ण काम किताब कैलेंडर ब्रोशर बिल मीटर पैड रजिस्ट्रार विवाह कार्ड फ्लेक्स प्रिंट होर्डिंग बोर्ड फोटो जस्ट प्रिंट गाड़ी तथा बाइक को नंबर प्लेट छपाई गई साथ ही स्टेशनरी का सामान होलसल मूल्य में पाई बीपीआई कंपनी को एलईडी बल्ब पावर सकेट पैनल लाइट ट्यूब लाइट प्रीमियर कंपनी को सब खाल का तार पाई सीवी कंपनी का संपूर्ण सामान कंपनी के मूल्य में बिक्री वितरण गरिदि आएको छ सीजी कंपनी को फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मशीन माइक्रोवन मुहाउने गीजर गैस चूलो भैक्यूम तथा किचन को संपूर्ण सामान उपलब्ध छ एलईडी टीवी कंप्यूटर लैपटप कलर प्रिंटर फोटोकपी मशीन झ्याल ढोका में लगाउने मोटो तथा पातलो रंगीन सीसा फोटो फ्रेम होलसल मूल्य में बिक्री वितरण गरिन्छ हार्डवेयर का संपूर्ण सामान काटी कब्जा छेक्चुनी तालछा वाल मिक्सर मोनो सावर बेसिन धारा कमोड पेन सेट पीवीसी पाइप सीपीवीसी पाइप पाइन का साथ ही फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मेसिन कंपनी के मूल्य में पाइन्छ भने ये सब मरम्मत र गैस वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग साथ ही बाइक को ट्यांकी कलर यति मात्र होइन सलेरी बस पार्क में रहकर न्यू स्टार तथा ज्वालामय ऑटो वर्कशप गैस सिलिंडर गैस सुनो साथ ही सब खाल बाइक तथा स्कूटर मरम्मत कर पार्ट पुर्जा मोबिल हेलमेट रेनकोट होलसल मूल्य में बिक्री कर नया तथा रिकंडीशन बाइक समेत अर्डर अनुसार उपलब्ध कराई संपर्क नंबर 0385203389 0385203069 मोबाइल नंबर 9860324426 र 9841909549 न्यू स्टार कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रिंटिंग प्रेस सलेरी सुनखुम्बु।

0: झंडू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: संचित सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 1 PM
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू तुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू
2: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सूर्य एफएम सूर्य एफएम अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न

0: 후 참고로 퍼지도록 사이.
1: सूचना सूचना सूचना सुरुंग जुन बेसी जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुंग क्षेत्र संचालन भइरहेको छ। निर्माण कार्य क्रम में माथिल्लो सुरुंग ढुंगा खस्ने संभावना रहेकाले तल्लो फेरा फाटन क्षेत्र में घासपात काट्न गाई बस्तु चराउन तथा आवत जावत गर्ने सम्पूर्ण स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारणहरूलाई सावधानी अपनाउन हुन यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। कृपया जोखिमयुक्त क्षेत्र में अनावश्यक रूप में नजानुहोस् र आफ्ना बाल बालिका तथा चौपायालाई समेत सुरक्षित राख्नुहोस्। सिभिल जुन बेसी उपभोक्ता समिति सुनि

0: प्रोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: टाइम चेक प्रोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: एक्सट्रीम न्यूज सपोर्ट 2 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु
2: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्ने एफएम सुन्ने एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली चलचित्र क्षेत्रका गीतहरू

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन सूचना
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङ को दिक्तेल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकी मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सपेंस गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग करी भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाई ओखलढुंगा
1: संपर्क नंबर 0375902222 9852588002222 और 9842803000

0: বন্ধু, তুমি তো বিদেশ যাওয়া লাগে রে। হ্যাঁ দিদি, পুটিকা দেখা করার শুরু করার কথা সেখানে চলে না। অহিলে তো ঘর চালানো সাহারে গাড়ে গিয়ে বিদেশ গায়ে বসে তো এসে দু চার পয়সা কমিয়ে হয়েছে কি মনে হয় দিদি? বিদেশ যাঁদেমা কাহা রামো হচ্ছে রা মঞ্জু? অস্তি ভর্খর রামবাহাদুর কাকাকে ছোড়ি অঞ্জলিলাই বিদেশ গেক এক হপ্তাই উদ্ধার করার ল্যাক থাকছেন তিনলাই? তুমি তো বিচার কর, এই বিচার কর, জানি নি ভয়ে বুঝে মাত্র যাও। খাই কে জানি ভালো দিদি,
1: रोजगारीको लागि, उच्च शिक्षाको लागि र विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्न जाँदा पनि बेच बिखरमा पर्न सक्ने जोखिम हुन सक्छ। यस्ता जोखिमहरू आउन नदिन सतर्क रहु र बुझेर मात्र विदेश जाउ।
2: नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्ड।
3: नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर, हाम्रो प्रतिबद्धता पेट्रोलियम पदार्थमा शुद्धता। यहाँबाट डिजल र पेट्रोल तपाईँले भनेकै समयमा तुरन्त उपलब्ध छ। सम्पर्क व्यक्ति परशुराम तामाङ 9847-85-35-19, समुद्र साक्य 9861-83-35-34, टेलिफोन 0385-20-43। नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर, प्रोपाइटर तोरण कुमार श्रेष्ठ 9862-82-13-87। नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सँगै यूआई फर्म मोटर पार्ट्स एण्ड सप्लायर्समा सम्पूर्ण गाड़ी मरमत सम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ। यहाँ साना तथा ठूला जुनसुकै गाड़ी मरमत गरिन्छ। सम्पर्क रमिला श्रेष्ठ 9862-93-06-46। नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर, सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 7 गारमा, जोरबौद सुलुखुम्बु।

0: टोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: 3 PM
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतिन नगर पालिका 5 सोलू कुंभ।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साउन्ड चेक सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: इट्स 4 PM अपराह्नको 4 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Suru FM. Studio time.
0: It's 7 p.m. Start to call start with
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: टोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: सन्चे सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 8 पीएम रात को 8 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू
3: Wherever you are, stay connected.

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्रमा।
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज ऊर्जा प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
3: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओखलढुंगा र खोटाङ को दिक्तेल बजार बाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जिनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाउनुका साथै सर्भिसिङ सेवा
3: एक्सपेन्स गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिङ गरे भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
3: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाङ ओखलढुंगा।
2: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852288002222 र 9842880300।

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 9 PM रात को 9 बजे टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू कुंभू

0: हटाउँदा साथी भाइ खोज्नु नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड
1: तुम्हारा मैं यहाँ काम कर मेरे लाइफ में जरूरी रखा।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखरिजुला को मिलन चुकना। होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुङ्गा र खोटाङ को दिक्तल बजार बाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
2: ओखलढुङ्गा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजाई ओखलढुङ्गा।
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852888022 र 9842808300।
3: Buenas tardes, enjoy with us.

0: संस्कार और संस्कृति की वो मान्यता सबके विशेषों के आजकल आत्मता यही कार्पेट नहीं हो विगत 3 दशक देखी को सुंदर साथ यदि कार्पेट के अंदर कार्पेट को पसारे यदि को लोगों हमें न बिस्तर होना यदि कार्पेट कार्पेट को शहनशाह
1: लैंगिक परम्परागत भूमिकालाई रूपान्तरण गरौं समानताको जग बसालौं नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड
2: के भयो।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: 10 PM रात को 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू